0: डाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट
1: मैं दुनिया

0: है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: नमस्कार, डॉक्टर धनश्री मकरंद खरवंडीकर, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।